0: से अमला ठिमिति डे शिमला होरी अमला निचा ने जजो लुंग साबदिन डे कंडे इना ला से या जोंमा छबि इंगि मारबा
1: खाचुंदा नामदो मालोसी
0: मारे लोनी दाने जोंछे मेबा निदा नार दे दे जे खर्चो वरे अरे यागो दिन डे योर बेला चिंवा लोपची थ्वेबे लोम लेग यागो छमा सेपसे अरे जोगोया योर बे
1: rang ju jo ti je le chuo mo yong la ju jo er le qi mi ne nga zu na si ji xi ri cha mo ran ne xi ri san ju ge
0: he se am la tin je de mo song go ju jo ge nga zu na po ji ji se bi ri yi ne ni na le de qi na ni le ning gu xiu yi zhi ba le jie ma ni wei man gu sa tu su ne qi ra le ning gu si xu zhu qiu
2: ming zhe ge wo ta de ling ga xiu
0: he se am la
1: 你也两个，你也两个，两个顶这节不我吃住节。阿姆拉拖欠呐，我的阿姆拉，生意我搞丢了，住的土老卡罗可用着了。卡拉塞查索的你让打不着球。Let's。
3: Сумнинджа, не ги что?
4: Эрине гуся. Чичо, лупчу тату марта. Муне, каси седе да.
1: Камасия хариба.
0: 以前我们吃多年的连接处，
1: 俺是两个专门乐器，那不是开始多。
0: 斯坦福，
1: 斯坦福哎！哇塞，这叫怎么连接这一边乐器的？
0: 就晓得穷些穷啊！吃个钱不是多不的。
1: 可就俺斯坦福的下。
0: 斯坦福，斯坦福找钱乐器去。俺们啦，俺拉不得住没？全没嘛
1: 去，卡里呢？
0: 吃个车子卡死人，老米吃个生米多，老子呢老米么多这么多啊，你阿什么大，阿拉什么，天平上嘛，叔叔当过个，
1: 钱呢，俺就卡就当过多，
0: 老子的女婿来吃香啊。

0: ठीक है तंदरा सुई भी जोश दे दा किसी में गुना ये गुगु बता सुई चो
1: कसा आगे ले खाता चुचे संदू मचु जंगे चे यंग मचु जमा जी
0: ये सिंस कले खाते खाने ये सुई बे चे से ना सेम गिप चुचे
1: रान दिंग चु दुआ मिंग कर सुई
0: रुमी शी
1: 石天东，钱队长，你准备了，明天他们先去吧。
0: 谢谢。

0: ये युसो दोस खियु निमदो सातो
1: सिपिया
2: सी नियो अमला के सेना बेस में की दहु ही बे मा सनी शिव सर्च
3: ने जीशा
2: आ
3: हम मा लो यों जे लाब छका छिमि शो रान खन सब छौ
2: हम ओ सी जांग के लो यों बा
3: निम नि खोल
2: ये को दे ल खुन सी ल पमिन नि हा को जा दे पुची के बम छि ल गब युस शे दान जे खसा शा शंग के तो छुए
3: आ थोम जो
0: सुरे आ तिंजे छारिये दे दो ल
2: छेसा पमति तिंजे दिकी देन बल ल
0: मिस शिदान केब खसे दो तो जांग दो
1: यो यो
2: पमति केले युना मिना
1: छारिये दे मति छे इति पेचिन केले मे दो
3: ने ने ल खला लंगा छि
1: What's up, Jah? What's this? Taring, are you doing? Never get him, Joe. Kaladi, you don't get to Joe. Say, I got wind.
2: Couldn't you
0: find the